कबाड़ी बना हूँ। सिड़ी सिड़ी की वो वोनी रोई रोई की इजा आड़िया बिकमी था ही इदा सिड़ी सिड़ी की इथोनी नी दिवगा की इदा सिड़ी सिड़ी की हा नजा जा खानी नी दिवगा की जाबुनी हा नजा जा उखानी।